0: से मो बगिया ही बेब
1: क्यों सद कंपिंग ले लव यू
0: सी ना कई मु चेक इन पर बमो
1: ओ
2: बाय तना
0: निको पगंपिंग मो
2: सी अदर में